ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 261।

संगीत सरिता इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला घुंगरू की तरह का भाग छे। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा सुबह 7 बजे और 7:30 पर सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 बजे होंगे समाचार प्रभात और इसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे सुबह 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम में आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनेंगे नए गीत सुबह 8:30 पर और सुबह 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सुधीर फड़के पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। यही कार्यक्रम पुनः सुना जा सकता है रात 9:30।

दिन में 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक कमेंट्स द्वारा कार्यक्रम सुरीला सफर में। दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुनिए दिन में 3 बजे, संवादक नेहा शर्मा, प्रस्तुत करता राघवेंद्र नेगी। दिन में 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए नाटक वो आएगी, लेखन तस्वीर आबिदी, निर्देशन जयदेव शर्मा कमल। दोपहर 4 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, फिल्म निर्देशक, लेखिका और नाटककार पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2, संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक और इसी बीच आप 6 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसी के बाद 6:30 पर झरोखा में आप सुन सकेंगे शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 6:35 पर संध्या रंजन। विशेष जयमाला में आज आप सुनेंगे महावीर चक्र मेजर दलजीत सिंह नारंग को। इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज अकॉर्डियन अरुण पौडवाल को सुनिए। हवा महल कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे, झलकी चोर के घर मोर, लेखन दिलीप सिंह, निर्देशन कमल दत्त। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए कार्यक्रम ये आप सुन सकेंगे रात 9 बजे, छाया गीत कार्यक्रम रात 10 बजे, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे सुनिए कार्यक्रम विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 261।

नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायास ही मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं, कोयल कूक रही है। ढेक और महोक पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम के इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है आज इस श्रृंखला की छठवीं और अंतिम कड़ी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं, हमारा ये खूबसूरत सिलसिला पिछली कई कड़ियों से चल रहा है और साथ में चल रहा है गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन साहब के साथ एक साक्षात्कार, जिसमें हमने उनके विभिन्न आयामों और विभिन्न पहलुओं पर नजर डाली, कभी संगीतकार के रूप में, कभी गायक के रूप में, कभी गीतकार के रूप में, कभी शोधक के रूप में, कभी चिंतक के रूप में। आज इस कड़ी में जैन साहब का एक नया अध्याय खोलते हैं जो हमें उनके आध्यात्म की ओर ले जाता है। ये आध्यात्म उन्हें कहां से मिला, कैसे प्राप्त हुआ और अपने मन से उन्होंने किस प्रकार आध्यात्मिक रचनाओं को सिनेमा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया, इस यात्रा के बारे में दादा से कुछ बात करें। दादा, आपका स्वागत है।
2: आध्यात्म आत्मा का स्वाभाविक गुण है और ये भी मुझे अपने पिताश्री से मिला है। मैंने फिल्मों में और धारावाहिकों में जो कुछ आध्यात्मिक काम किया है उसकी एक झलक छोटी सी आपकी सेवा में रख रहा हूँ।

0: जैसा आपने कहा कि यह आध्यात्मिक उजास आपको आपके पिताश्री से प्राप्त हुआ, आपके संस्कारों से मिला, इसके साथ साथ क्या कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनकी रचना का प्रभाव आपके मन पटल पर पड़ा हो और जिन्होंने आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया हो?
1: वास्तविक बात तो यही है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें हो सकता है शब्द या काफिया रदीफ कुछ अलग हो, लेकिन बात सभी लोगों की वही लोग बोल रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और कोई आध्यात्मिक रचना आपने कुछ जी। पद भी संगीतबद्ध किए हैं और लोगों को एक एक अजीब सा मतलब अजीब वातावरण से हटा के आध्यात्मिक तरफ लाई हैं आपकी रचनाएं, कुछ और कुछ सुनाए दादा।

0: तथा संगीत सरिता के सफर में आपके साथ चलने के साथ मैंने एक बात पाई है कि आपके अंदर जो स्पॉन्टेनियस काव्य रचने की क्षमता है वो बड़े कमाल की है। न जाने कैसी आध्यात्मिक और वैचारिक शक्ति है जिससे आप तुरंत कविता कह देते हैं, काव्य रच देते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे?
1: मैं सिर्फ अपने आप को उस माहौल के हवाले कर देता हूँ और वहां से जो कुछ फूट पड़ता है उसे गा देता हूँ।
0: संगीत सरिता का ये संगम, ये सफर भी यहाँ परिपूर्ण हो रहा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम चाहते हैं आप श्रोताओं को दो शब्द कहें।
1: पहले तो मैं अपनी भावना रखना चाहूंगा और फिर एक मुखड़ा सुनाऊंगा
0: अवश्य,
1: जो अभी अभी मेरे मन में आया है गाने का। ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे।
0: वाह वाह।
1: ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे। ज्ञान का यदि ज्ञान दे तो उस पे मत अभिमान दे, और यदि अभिमान दे तो औरों का गुणगान दे। शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान दे।
0: वाह वाह।
1: शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान दे।

0: दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ आने के लिए और हमारे असंख्य श्रोताओं को लाभान्वित करने के लिए। मैं राजेश चौरी आपसे विदा लेता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविन्द्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और संध्या मुखर्जी के गाए इस गीत के साथ फिल्म तराना से। प्रेम धवन ने इस गीत को रचा है, अनिल बिस्वास का संगीत।

0: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार की आवाज में बाल योगी फिल्म का गीत, रचना है भरत व्यास की, संगीत चित्रगुप्त का।
1: जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बतूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनिल बिस्वास का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कवि प्रदीप ने। अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजें हैं। फिल्म का नाम किस्मत।

0: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: दिल्ली का ठग, इस फिल्म का गीत अब सुनेंगे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि का संगीत।
3: कैट, कैट माने बिल्ली।
4: आर ए टी रैट, रैट माने चूहा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत संपन्न करने की दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
4: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता।
5: अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।
6: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। युगल गीतों का ये कार्यक्रम है जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ प्यार भरे नगमे। तो आइए आगाज करते हैं पहेली फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है हेमलता और सुरेश वाडकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: दूसरा आदमी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत राजेश रोशन का।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं खट्टा मीठा, इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजों में। गुलजार के बोल है राजेश रोशन का संगीत।

भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और

0: सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे

0: आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आपे ट्यून कर्यु छे विविध भारतीनुं वडोदरा केन्द्र। प्रस्तुत छे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन एनवायरमेंटल जस्टिस, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लीगल रेमेडीज बाय शुभ्रजीत गोस्वामी, प्रोग्राम ऑफिसर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, एंड स्मिता हर्षल साल्वे, सीनियर लीगल कंसल्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
4: Community, एक community जब कोई problem से जूझते हैं, ये हो सके कि एक खराब air quality हो या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो court नहीं जा पाता है। Court final stage पे आता है and court इसलिए लोग

0: जाती है, क्योंकि कोर्ट पे एक चीज मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारे देश में, दैट इज जस्टिस। अब एनवायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ, कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज्यादा नजदीक रहते हैं वो लोग सबसे ज्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमेडीज की जरूरत उनसे सबसे ज्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पे बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीजों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीजों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। So we there is a proverb called precaution is like, you know, it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment? That need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: लॉके ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is our law gives the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो, उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो, सारे उसका जो local language है, उसपे वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है. एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी, जो इम्पेक्टेड कम्युनिटी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है, उनके प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक

अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारा एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसके क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज लीगली किया गया। उसके बाद ये चीज जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करता है उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए, उनका जो इश्यूज है उन पे बात करने के लिए, उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे हैं।

0: उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए, उनका जो इश्यूज है उन पे बात करने के लिए, उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारा उधर आया है जिसपे एक जो फिशिंग फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहां पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे, तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है। तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहां पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ सब एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रहा है, वहां पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहां पे जो स्कोप है उसके वहां पे एक बड़ा होटल बन रहा है। तो हम लोग उसके लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन, पहले क्या वहां पे मैंग्रोव हुआ करता था, उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है, जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैंग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैंग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहां पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीजों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए, उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस we should talk about strengthening the ground where the public is actually staying. Certainly rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve truth, environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach. It should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने introduce किया है NIC के साथ, जिसमें एक comprehensive legal window, single window दिया गया है for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनसीएप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज

जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी सिटीज के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है, जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दी। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट होते हैं एवरी सिक्स मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रिस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआर को, या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: दोस्तों आप सांभी रहा है था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारण विविध भारतीना वडोदरा केंद्र पर थी करवामां आव्यो थोड़ी जोर में सांभरशो चित्रलोक।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे

0: श्रोताओं, आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिवस हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को नमन करने का दिन है। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए दुश्मनों को परास्त कर तिरंगे की शान कायम रखी। ये दिन हमें देश की एकता, अखंडता और उन अमर वीरों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिनकी बदौलत हम सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अब आइए आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत फिल्म बाजीराव मस्तानी से। एएम तुराज और नासिर फराज ने इसे लिखा है, शैल प्रीतेश नितिन शंकर ने इसे सुरों में ढाला है।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिव्या कुमार और प्रिया शर्मा की आवाजों में ABCD 2 इस फिल्म का गीत। मयूर पुरी ने इसे लिखा है, सचिन जिगर का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा

0: पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: आइए अब सोनू निगम की आवाज में सुनते हैं अग्निपथ फिल्म का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, अजय अतुल का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एजेंट विनोद। इस फिल्म का गीत आवाजें श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम का संगीत।

A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में सुनिए इरशाद कामिल की ये रचना। मोहित चौहान और सुजैन डी मेलो की आवाजें, रॉकस्टार फिल्म का ये गीत।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम अजहर। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। मनोज यादव ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़।

0: से धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती
0: है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, जिसे शुरू में ढाला है प्रीतम ने, आवाज अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

सुधीर फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासूवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्य गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि ग.दी. माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कठिन मधुर तुझसी लागला लंके।

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

हिंदी में सुधीर फड़के की कुछ गिनी चुनी फिल्में ही हैं। भाभी की चूड़ियां के अलावा उनकी एक फिल्म आई थी गोकुल का चोर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम,
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
5: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
0: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी

शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर
अभिलाष।

जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है
हम वोकल

फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा

वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान
किसी न किसी क्षेत्र

समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली

वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की

0: स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: दोस्तों, आप सांभळी रह्या हता मन की बात अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ना मन की बात।

0: शस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये उन अनगिनत नायकों

0: याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह की सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये दायित्व सौंपा गया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के अनहर सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म एलओसी करगिल से। आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, जावेद अख्तर की रचना है, अनु मलिक का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी

0: सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं।

0: सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मिया आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट या इबारत पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ शब्द होते हैं और कुछ भाव होते हैं। उन शब्दों से आपको चुनने होते हैं गाने और उन भावों से लिखनी होती है आपको टिप्पणी। तो आज की इबारत हम आप तक पहुंचा दें। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं है, उनके लिए खास तौर से, जो लोग जुड़ चुके हैं तो इन शब्दों को तो चुने ही, गानों को तो चुने ही, लेकिन इनमें जो भाव छुपे हैं, जो सवाल छिपे हैं, इससे जुड़ी हुई बातें भी साझा करें। जिंदगी एक रोज कान में कह गई एक बात, ये आज की इबारत है जो पढ़ रही हूँ। जिंदगी एक रोज कान में कह गई एक बात, प्यार वो वृक्ष है जहाँ धूप छांव दोनों होते हैं। बताइए अब धूप छांव वाले गाने। गम की कड़ी धूप में कहती है जिंदगी, हाय वो दिन कहाँ गए, वापस क्यों ना आए। इस पर तो बहुत सारे गाने होंगे। फिर मुस्कुरा कर बोली जिंदगी, दुनिया एक मेला है, यहाँ हर चेहरा अपना नहीं होता, न मिले फूल तो कांटों से दोस्ती कर लो। फिर एक रोज जिंदगी कान में आकर धीरे से बोली, हर किसी की मोहब्बत में वफा नहीं होती, लेकिन बेवफाई का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। फिर एक रोज जिंदगी मुस्कुराई और बोली, लिखो एक खत और वादा करो। यहाँ पर कौन सा गाना आपको याद आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले पूरे करने हैं अपने सारे ख्वाब, नींद में देखे सपने भले कहाँ पूरे होते हैं, भला कहाँ पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं उनके जिनमें होता है हौसला, और फूलों से भी घर बना लेते हैं। फिर जिंदगी आखिरी बात ये बोली कि शिकायतें कम करो, सफर से मोहब्बत करो, जो राह चुनी है उसी पर चलते जाना। तो अब तो मुझे लगता है पढ़ने के बाद आपके जहन में बहुत सारे गाने कौंध रहे होंगे। कौन से वो गाने हैं जो इस वक्त कौंधे हैं, लिखिए जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप कीजिए, पहुंच जाएंगे वहां, और साथ में हमारी बातें और हमारे सवालों के जवाब भी देते चलिए। यहाँ आज एक शब्द आया है मेला, तो जरा बताइए कि मेले से जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में आए हैं, और आप ये भी बताइए कि मेला देखने आप पिछली बार कब गए थे और मेले से जुड़ी हुई कौन सी याद है। लेकिन

आप सोच रहे होंगे कि हम मेला वाला गाना यहाँ सुनाएंगे। जी नहीं, आप मेले वाले गाने चुनिए। अगर बहुत सारे श्रोता कोई अच्छा सा गाना चुन लाएंगे तो हम वही गाना आपको सुनवाएंगे। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना, फिल्म साथ साथ। पहली लाइन में ये शब्द कहीं आता है इस गाने से जुड़ा हुआ, जरा बूझिए और बताइए। हाँ, हीरो हीरोइन के नाम भी आपको पूछने हैं। तो आज आपको पूरे सफर में सुरीला सफर के साथ रहना है और बीच बीच में जो सवाल हम पूछते जाएंगे उसके जवाब भी देने हैं आपको। हीरो हीरोइन का नाम फिलहाल बूझिए।

जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपकी इबारत की पहली पंक्ति में बिल्कुल सही वर्णन, प्यार में धूप छांव होती है, परंतु प्यार करने वालों को भी तो वृक्ष की तरह खुद धूप सहते हुए अपने साथी को छांव देना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, भाई एक नहीं अनेक श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने और मेले से जुड़े हुए बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखा है और दुनिया का मेला, मेले में लड़की और दुनिया ये मेला है, और मेले पर तो बहुत सारे गाने भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने, जो फिल्म गुप्त का है उदित नारायण की आवाज में, दुनिया हसीनों का मेला। एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल है सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के यथार्थ और मोहब्बत के सुकून का अनूठा संगम है। ये गाना सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि जीवन में सच्चा हम सफर हो तो जिंदगी की धूप भी घने साए में बदला जा सकता है। जरा बताइए कि अब कौन सा वाला गाना हो सकता है, क्योंकि जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, कि गाना आया आपके जहन में क्या? अगर इसके अलावा कोई गाना आया हो तो बताइए। हम फिलहाल यही गाना सुनवाते हैं, फिल्म अनुराधा। आपको बूझना है कौन हीरोइन कौन हीरो, और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी बताइए। फिल्म अनुराधा। और मेले से जुड़ी हुई याद भी साझा कीजिए।

साथ साथ फिल्म की ये गजल थी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें थी, जावेद अख्तर के बोल थे, और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, दीप्ति नवल, फारूक शेख। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सही।

इस ये जो गाना था इसका शब्द बाकायदा जो इबारत है इबारत की शुरुआत में ही आ जाता है, लेकिन इस गाने का जिक्र बहुत कम मिला। हालांकि बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और अनगिनत गाने लिख रहे हैं, कहीं धूप तो कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसके जीवन है वो नाम, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कवि प्रदीप की रचना है। और ये बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं, जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, फिल्म मेला। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल आया, फिल्म

साथ का एकालजयी गीत सुनाया आपने और अनगिनत श्रोताओं की अनगिनत टिप्पणियां आई हैं और हम आपको बारी बारी से सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, भाई बहनों के साथ खंडवा के बीच लगने वाले नाम सप्ताह के मेले में जाना, झूले झूलना, वो चहल पहल और फिर वही परंपरा अपने बच्चों के साथ दोहराना। ये अनुभव दिल के बहुत करीब होता है। वक्त कितनी तेजी से बदल जाता है लेकिन शहर और वहां के मेले से जुड़ा लगाव कभी कम नहीं होता। एक श्रोता ने और लिखा है कि मेले का जिक्र हुआ तो अभी हमारे शहर में मेला लगा हुआ है और ये गाना, ये बात सुनकर हमें याद आ गया। तो जरा बताइए कि मेले वाली कौन सी याद इस वक्त आपके जहन में आई है? मेले में कौन सी चीज आप जाकर खरीदा करते थे? क्या वो मेले में जाकर वो जो बुढ़िया के बाल है वो याद आया कि वो खरीदते थे? और खिलौने, मिट्टी के, लकड़ी के बहुत सारे खिलौने खरीद कर ले आते थे, वो याद आया? और फिर जो सस्ते दामों पर किताबें मिलती थी, क्या वो भी याद आया? और वो भी याद आया कि कभी अपने पिता की उंगली थामकर, माँ की उंगली थामकर मेले में आप घुमा करते थे और कभी उंगली छूट गई तो कितनी घबराहट होती थी, ऐसे लगता था अब क्या होगा, अरे कहाँ गए, बस रोना आता था। कभी ऐसा भी हुआ? मेले में जाने के बाद तो अनगिनत अनुभव हैं, तो उनमें से कुछ अनुभव आप साझा कीजिए। फिलहाल चलिए मेले का ही गाना सुनवा देते हैं, ये रहा ये गाना। अगर हाँ आपके जहन में और कोई गाना आ रहा है तो जरूर बताइएगा। अगर आपने टिप्पणियां भेजी तो एक गाना मेले का और सुनवाएंगे।

मेला फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे। और इससे पहले हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, रविशंकर का संगीत था और कलाकारों के नाम भी हमने पूछे थे, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल पूरी और सही जानकारी लिख भेजी है। और ये जो मेले वाला गाना था, इससे जुड़ी हुई भी बातें बहुत सारे श्रोता हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में दशहरे का मेला जाते थे और वो मजा आज के बच्चे नहीं जान सकते हैं, और मेले से खिलौने खरीदा करते थे, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुराधा फिल्म का कालजयी गाना और सुनहरे पलों की याद और वर्तमान के अकेलेपन की एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरी अभिव्यक्ति है। दरअसल जब बात मेले की चली है तो हम भीड़ भरे मेले में होते हैं कई बार, तब भी अकेलेपन का एहसास होता है, उस एहसास को भी आप साझा कर सकते हैं। एक आज के जमाने में खासतौर से यह एहसास हर किसी के दिल में होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि

दिल ने पुकारा। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी इंदिवर की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने सही दिया और कलाकार का नाम भी बिल्कुल सही लिखा है, शशि कपूर। हालांकि इस गाने में वफा शब्द आता है जो हमारी इबारत में है, लेकिन असल में तो है बेवफाई का गाना। तो आपको अभी कौन सा गाना सुनना है? इस समय आपके जहन में कौन सा शब्द और कौन सा गाना गूंज रहा है?

जो सुनवाने जा रहे हैं यही या कोई और, जरा ये बताइएगा। और जो अभी गाना सुनवाएंगे उससे जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में कौन थे ये भी बताइएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है जरा हम बता दें। जिंदगी किसी किताब की तरह नहीं, एक हम सफर की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना नहीं, एक नया एहसास देती है। जो उसकी हर बात को दिल से सुन ले, उसके सफर में शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बेवफाई की हो तो फिर शिकायतें ही शिकायतें। जरा सुनिए ये गाना और बताइए इस समय आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं जिसमें वफा शब्द हो और बेवफाई भी हो। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हीरो हीरोइन का नाम बूझना है और गीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलजार के बोल थे, खयाम का संगीत था। और अब मेले का जिक्र चला तो हमारे बहुत सारे श्रोता, यूं कहें कि सभी श्रोता मेले में चले गए हैं और मेले से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। चलिए हम भी गुम हो जाते हैं उसी मेले में। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में जाना, जलेबी खाना, मिट्टी की गोलक, लकड़ी का घोड़ा बचपन में लेना नहीं भूलता था। एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि हामिद का चिमटा याद आया, दादी की कहानियां याद आई। तो अब हामिद के चिमटे से मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आई, तो जरा आप बताइए कि ये जो हामिद का चिमटा, हामिद चिमटा ले जाते हैं अपने दादी के लिए, सारे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं मेले में जाकर, और ईद का त्योहार है और हामिद अपना जो पैसा बचाता है और अंत में दादी के लिए चिमटा खरीदता है और अपने दोस्तों में बहुत पुल बांधता है, डींग हाँकता है, देखो मैं तो कितनी अलग तरह की चीज खरीदता हूँ। तो पहले सारे बच्चे उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप जरा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी, तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतजार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो जरूर बता सकते हैं। और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है। तो आप ये भी बताते चलिए हमें कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा? मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं, इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे। तो ये बताते चलिए। और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा, जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास जहां विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है, उसके पास एसएल वर्ल्ड है, कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे। जब ऊपर जाते तब तो ठीक था, लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें और उनमें से 50 राइड्स में हम सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स हैं और ऐसे राइड्स हैं कि जिसमें जो ट्रेन की शक्ल में जो चलती है तो फिर ऐसी चीख सुनाई पड़ती है कि आप एकदम डर से कांप जाएं। बहरहाल अपने अपने अनुभव। लेकिन वो जो असली मेला लगता था, खुले मैदान में बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारे लोग मिलते थे और एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, उस मेले की बात ही अलग है। अब कहाँ है वो मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 6 वर्ष का था तो पिताजी की उंगली पकड़कर चला जा रहा था। एक छोटा पड़ा हड्डी का टुकड़ा उठा लिया, भीड़ में पिताजी ने अपने कंधे पर बिठा लिया। उस 5 इंच के टुकड़े से मैं अपने पिता के सिर पर टक टक बजाता जा रहा था। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने नीचे उतार दिया और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया और थोड़ी देर के लिए बहुत नाराज हो गए। ऐसी तमाम बातें श्रोता याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो 24 घंटे मेला मोबाइल में लगा रहता है, सभी तरह के तमाशे और सभी तरह की खरीदारी हो सकती है। तो ऐसे में कौन सा वाला मेला आपको अच्छा लगता है, वो वाला मेला, बचपन वाला, ये, या फिर मोबाइल वाला मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक नहीं बैठे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी बिहार में राजगीर में अधिक मास का मेला लगा था जो 1 महीने तक चला। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन

के मेले, दिवाली के मेले, दशहरे का मेला और भी बहुत सारे मेले देखे। बचपन में गुड्डे गुड़िया, चरखी फिरकी आदि, मिट्टी के लकड़ी के खिलौने, गुल्लक आदि खरीदते थे, पर अब तो भीड़ भाड़ से भी डर लगता है। अब भीड़ भाड़ का भरोसा भी नहीं रहा कि कब कौन आपके पैर कुचल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब वो संवेदना कम हो रही है लोगों में। इस संवेदना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल, बात हमने पूछी थी आपसे कि जब आप कोई राह चुनते हैं तो उस राह पे चलते हुए क्या कभी कोई अवरोध पैदा किया किसी ने, आपके परिवार ने, समाज ने, ये बताइए। और साथ में ऐसा ही एक गाना और बताइए जो इस गाने से मेल खाता हो। और हाँ, एक सवाल और था, हामिद का चिमटा दादी के लिए, प्रेमचंद की लिखी ये कौन सी कहानी है? फिल्म तपस्या है, आपको पूछना है साथ में हीरो हीरोइन का नाम। बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप दे पाते हैं।

0: उस राह पे राही चलते जाना रे तपस्या फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही और त्वरित जवाब दिया, राखी और परीक्षित साहनी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए सिटी से बाहर जाना था लेकिन दादा दादी ने रोक लिया, यही पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाने मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें विभिन्न पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों से गुजरते हुए कई मुकाम आते हैं, आज के सफर में वही यादों का सफर है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद जब गुजरी जिंदगी का हिसाब देखता हूं तो पता चलता है कितनी कठिन थी ये जिंदगी, लेकिन पत्नी का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद से आरामदायक रही जिंदगी। और अब जो हमने सवाल पूछा था उसकी बारी है, हामिद का चिमटा दादी के लिए जो लाना होता है वो किस कहानी का शीर्षक है, मतलब कहानी का शीर्षक हमने पूछा था, प्रेमचंद की लिखी कहानी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईदगाह। और हमें लगता है बचपन में सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी और पढ़ने की शुरुआत ईदगाह से होती है और बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल थी ये तो कहानी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईदगाह की कहानी हमारी हिंदी की किताब में होती थी। हामिद की माँ हाथ रोटी सेकते हाथ जलता जल जाता था, 3 रुपए का चिमटा खरीद लाए थे। दरअसल हामिद की माँ नहीं, हामिद की दादी थी। हामिद के माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और इस वजह से दादी ने पाला था और बहुत गरीबी में पाला था, और दादी का भी उसमें बहुत, दादी की संवेदना है कि वो हामिद को ईद के दिन क्या तोहफा दें, क्या लाएं, और हामिद के लिए ईद किस तरह से खुशगवार हो। यहाँ दादी सोच रही होती है और हामिद अपनी दादी के लिए चिंतित होता है कि दादी का हाथ जलता। बहरहाल एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। दरअसल प्रेम में फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं, और फूल के साथ कांटों का साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और जो सबसे अच्छा सुंदर फूल लगता है उसमें तो कांटे ही रहते हैं, गुलाब का फूल। ऐसे और कौन से फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं, बता सकते हैं आप? फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: फिल्म का नाम जरा बताइए।

अनोखी रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, रोशन का संगीत था और सभी श्रोताओं ने बगैर पूछे ही बताया है, परीक्षित साहनी जाहिदा सही बताया है, फिल्म थी अनोखी रात। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, यहां कुंभ मेला लगता है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने प्रयागराज कुंभ मेले की बात लिखी है और एक श्रोता ने लिखा है कि सपने ही सपने कब हुए अपने, आंख खुली और टूट गए, नींद के सपने हकीकत में बहुत अंतर होता है, कई बार सपने बुनने में आनंद भी आता है और सपने जब दो लोग मिलकर साथ साथ पूरे करते हैं तो उस सपने की बात ही अलग होती है। जरा बताइए कौन है वो दो लोग जो मिलकर सपने बुन रहे हैं, फिल्म लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें, हीरो हीरोइन का नाम बताइए जल्द।

फौरन बताया। कुमार गौरव विजेता पंडित, एक श्रोता ने ये भी लिख डाला है कि प्रमुख कांटे वाले फूलों के नाम भी बता दिए, गुलाब है, बोगनविलिया है और बहुत सारे नाम इन्होंने लिख भेजे हैं। और लाल, गुलाबी, पीले रंग के छोटे आकर्षक फूल खिलते हैं और ऐसे कैक्टस फ्लावर्स पौधे की पूरी सतह पर कांटे होते हैं। लेकिन अब वक्त नहीं कि हम पूरी टिप्पणी इनकी पढ़ें। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस जानकारी के लिए। अब इतना बता दें, आज का सुरीला सफर का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। बस आज का सफर इतना ही।

फूलों के शहर में घर अपना, भाई सपने वाला ये गाना था। बहुत सारे सपने अधूरे वाले गाने भी हैं और हमारी भारत में सपना शब्द था। लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और पूछा था हमने हीरो हीरोइन का नाम, सभी ने

श्रोताओं नमस्कार, आज है कारगिल विजय दिवस। आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज की त्रिवेणी इसी विषय पर। 26 जुलाई भारत के इतिहास का बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की और दुनिया के समक्ष अपनी वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। इसी ऐतिहासिक जीत की स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध मई से जुलाई तक चला, सन 1999 में, लगभग 60 दिनों तक। ये 60 दिन हमारी सेना ने पूरी वीरता के साथ, पूरे संघर्ष के साथ युद्ध किया। पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल, द्रास, बटालिक और टोलोलिंग की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। ये कब्जा हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता था, क्योंकि इन क्षेत्रों का सामरिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर इन क्षेत्रों से निगरानी रखी जा सकती थी और यह सिद्ध हो सकता था घातक भारत की राजधानी के लिए भी।

भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से दुर्गम पहाड़ों, शून्य से नीचे तापमान और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। टाइगर हिल जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराकर हमारे वीर जवानों ने विजय का इतिहास रचा। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सैनिक शहीद हुए। कैप्टन विक्रम वत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जैसे वीरों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। कैप्टन विक्रम वत्रा का नारा ये दिल मांगे मोर आज भी भारतीयों के हृदय में जोश भर देता है। हम सभी इन वीरों की वीरता को प्रणाम करते हैं। 527 वीरों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि यह भारत की एकता, दृढ़ इच्छा शक्ति और सैनिकों के अदम्य साहस की विजय थी। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षित सीमाओं को और शांतिपूर्ण जीवन के पीछे हमारे सैनिकों का त्याग और बलिदान है। आइए इस अवसर पर हम उन सभी वीरों को श्रद्धा पूर्वक नमन करें। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लें। सरहद पर खड़े हुए प्रत्येक वीर को हम सभी धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कुछ ये कि सरहद पर खड़े सैनिक केवल भूमि की रक्षा नहीं करते, वे करोड़ों भारतीयों के सपनों, विश्वास और भविष्य की भी रक्षा करते हैं। सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और हमारी रक्षा में अडिग अचल खड़े हुए प्रत्येक जल थल नभ के सैनिक को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

कारगिल विजय दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, विधि जैन को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान

0: पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है।

सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को

0: विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर चार भारतीय सवार थे, इनमें से दो भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ईशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

छोटी छोटी बातें, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला ज्योति श्याम कुंवर और इनके अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और इनके परिजन। और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगर गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरगी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसर जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बासीवाल, जॉनी बासीवाल, धनराज बासीवाल की, श्री गंगानगर से, दमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी कान्हा और आदित्य इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल यहीं से मतलब जिला अम्बाला से। आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद का। ये गीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, रमेश, आनंद, अन्वित और इनके परिजन। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार, दीपक और आसमा।

पसंद करता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव, अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनावती, दामिनी इनावती।

तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हजरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। गांव कोटगा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना दांगी और लक्षित दांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: रुको, बच्चे कुछ कहना चाह रही है।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: वही नहीं हंसा
2: जाता, जोर से नहीं हंसा जाता।
0: सही बात है।
3: इस कॉफी हाउस के गोशे की भेस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
2: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी।
3: काफी साहब,
4: मेरे दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
5: ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीकती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
4: हाँ, मैंने भी सुनी।
5: आखिर वो किसको बुलाता है?
4: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूँ नहीं।
6: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
4: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
6: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
4: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
7: हाँ,
8: ये तो है।
0: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: अर्ज करो सुधीर।
1: सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की?

0: ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी,
1: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: वाई जी
3: कोई डॉक्टर

0: ओ गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओ, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओ, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? ओह, कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फर्रुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा शरीर खुद मुझसे नफरत करने लगा है। मैंने जुल्म भी तो किए हैं अपनी फौजिया पर।

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर, बस
1: नहीं, नहीं, नहीं, छुपा नहीं।

0: नहीं सकते। बताओ क्या बात है, तुम शाम से ही उदास हो। तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
1: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
0: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
1: हां सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
0: मैं समझा नहीं, वो पागल आवाज।
1: हाँ? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
0: पहले ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
1: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
0: ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
1: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
0: और खुद को धोखा देता रहा। मगर क्यों?
1: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत।
0: मगर
1: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज।
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखूं।
1: फौसिया।
2: हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
1: मगर क्यों?
2: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, और फर्रुख मेरी

0: तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सुहेल साहब, आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे। क्यों?
0: हाँ,
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे
0: तो तुम नहीं मानोगे।

0: लो सुनवाई तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं तेरी जान ले लूंगा तेरी जान ले लूंगा
1: एक अंधी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत कुछ भी हो फौजी
2: आप मुझे फौजी कहकर न पुकारा कीजिए
1: मुझे माफ करना मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था
2: मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ
1: फौजी मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में घोल लगा दिया है फौजिया आंखें खोलो फौजिया
2: अरे ये तो बेहोश हो गई
1: फौजिया मैं तुम्हारा गुनहगार हूं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ गई मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया मैं कभी चल नहीं पा सकता नीलम मेरी फौजिया को क्या हो गया है
2: बस करो सुहैल जो तुमने किया हे भगवान इसे बचा ले मेरी अजीज सहेली मेरी बहन होश में आ देख देख मैं हूँ नीलम लो ये दवा पी लो
3: कौन नीलम
2: हाँ फौजिया मैं नीलम और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी इसे गले लगा लो
3: मेरे बच्चे ओ सुहेल कहाँ है
1: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया मैं
3: मेरा आखिरी सलाम
1: हो सके
3: तो मुझे माफ कर दो
1: नहीं फौजिया
3: अब मैं तुम सबसे दूर बहुत दूर जा रही हूँ नीलम मेरी बच्ची मेरी फौजी अपनी अमानत मैं तुम्हें सौंप रही हूँ
1: फौजिया

0: ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: वो है जी, वो है जी, वो है जी, वो है जी, वो है जी।

0: अभी अभी
1: औसी, मेरी बच्ची।
0: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी?
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप? आप नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहाँ कैसे?
3: जी जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ।
3: इरादों?
2: जी फौजी, जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूँ, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी माँ तो नहीं।
1: माँ की ममता से इसकी झोली भरती।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ।
2: फौजी मेरी जिंदगी है।
3: नीलम जी,
2: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
3: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
2: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
0: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अभी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
0: आप रोइए नहीं अभी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
3: खड़े हो जाइए?
0: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
2: नहीं फौजी, ये तुम
0: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
3: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे, अब आप खुश?
1: फौजी
2: मेरी बच्ची,
3: मेरी।

प्यार मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं। जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह जहां से हम चले थे।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं।
2: नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ एक साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी, मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मजा आए, और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता, फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण ने और मैंने शादी की और हम दोनों का तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविजन की नई नई शुरुआत हो रही थी, टेलीविजन नाटक फिल्म अगर हो पाई तो, तब तो वो एक सपना था सुनहरा, लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए, और अरुण को तो 3 साल अलकाजी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था, और अलकाजी साहब फिर आगे वहां रुके, तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्य द्वयी करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पे नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंसवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे किए। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शोज में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे लायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए, है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती हूँ।
1: जी जी।
2: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे, और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहां से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर, तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं, वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को राजी नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे और वो सब पास आ रहा था, हाँ हवे की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो, ओके 10 रुपए में 25 रुपए में जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है, तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके, तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्य द्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था

0: हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर दो तीन दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट, ये गुनाह तो था ही। तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं नहीं वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे, तो और जैसा मैंने कहा उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिड़गिड़ाए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ दिया कि हम फला दिन को हम आपके दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन, ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई। मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट, विच इज सो सैड।
1: जी जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
3: दो दीवाने शहर में।

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा।
1: हाँ जी।
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: लगातार, एक पंजाबी में भी किया।
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्भार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात यह कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मजे से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी किया था उसको लेके?
1: नहीं, टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया।
1: दिल्ली में किया, हाँ। और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवे दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पांच छह दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जो तू तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था चंडीगढ़ का,
0: का।
1: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है हाँ वगैरह वगैरह का, मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी। जब वो अपना शांत हो जाता था, 10-15 मिनट झगड़ के फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग।
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया, मराठी नाटक पंजाबी होने लगा। यहां से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता। लेकिन
0: जहां तक मुझे याद है आप आकाशवाणी भवन गई थी।
1: हाँ नहीं, वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ, एकदम वहां से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर,
0: जी,
1: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
0: डिक्शन, जी,
1: डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ, तो वो एक साल ही मैंने वहां पढ़ाया। और मेरे ये सुन के आपको, आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
0: बड़े दिग्गज लोग,
1: एब्सोल्युटली, जलाल आगा, साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर था श्याम बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक की हीरोइन, फिर राकेश पांडे
0: जी,
1: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
0: उनको लेकर फिल्म लॉन्च हुई थी संगत,
1: किसकी,
0: राकेश पांडे को लेकर कुछ कुछ फिल्में लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
1: नहीं, भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना, बासु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
0: उसमें
1: उसका हीरो था
0: जी,
1: हाँ, राकेश।
0: बाद में बासु दा ने एक फिल्म लॉन्च की थी संगत, उसमें अच्छा, भी वो हीरो थे पर वो बनी नहीं,
1: वो नहीं, नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने, यहाँ तक कि मुझे एक बार फिर बहुत सालों बाद, हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ बच्चन है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे, तब दुबला पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया।
0: शैलेंद्र सिंह वगैरह भी थे?
1: नहीं नहीं,
0: अच्छा।
1: मेरे क्लास में नहीं ना, तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया। और हाँ, उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ, बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो

0: वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने, कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे।
1: वाह वाह वाह,
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ सब रवैया, तो वो थे और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली ये, बड़े खुश हुए मुझे देख कर, प्यूना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से
1: जी।
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया। और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
1: क्या बात है, ये ख्वाब भी नहीं था,
0: ख्वाब भी नहीं
1: अब
0: था,
1: ये जगह जिंदगी ले जाने वाली,
0: ये मेरी कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए
1: जी।
0: और तब ये इश्तहार पढ़ा जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहां चुनी गई मैं, और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे भारत के, पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूं, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या शानदार बात है, वाह वाह,
0: बहुत नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे, कुमार वासुदेव, पी कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और हबीब तनवीर थे।
1: क्या बात है, वाह।
0: लेकिन हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में, तो विच इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 मैजिक ईयर्स इन टेलीविजन। और वहां ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल यू नो कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये बीबीसी से आए थे वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे
1: जी,
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मजा भी बहुत आया।
1: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अबू अवार्ड जीता,
0: यस एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन तेहरान में,
1: वो चाय की टपरी वाला,
0: हाँ जी, वो छोटी सी फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं टेलीविजन में, और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी, चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह, और वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहां ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था, और इट वाज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा, तो इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है, सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, तो इट वाज, इट डिडंट हैव एनी डायलॉग, नथिंग, तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह,
1: जी जी, पोस्टर बनाने वालों पर काम किया,
0: पोस्टर, हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री, तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ एक पूरा
1: हैंड पेंटेड पोस्टर्स,
0: हैंड पेंटेड, हाँ उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहां वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सगा पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे, और वहां हम पहुंच गए, तो क्या बात करें वो लोग, और मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना, तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे

0: इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह,
0: इसको लोक कला कहो क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
1: क्या बात,
0: तुम
1: है?
0: लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे, हाँ, पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी,
1: वाह,
0: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक तुम देखोगे, खुश हो जाओगे, और वो चलता है, वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा कान छुए मानती हूँ और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई,
1: पूरी
0: ये पूरी
1: वो, क्योंकि अब तो
0: कॉम ही गायब हो गई
1: है ना। एम एफ हुसैन मिले थे?
0: हाँ हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू। मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर,
1: महाराष्ट्र में एक बड़ी परंपरा थी।
0: हो
1: जी,
0: तोबा तोबा, मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तेफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो बहुत खुशी से वो, हाँ हाँ मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया। और क्या कहूं, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की, अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाया।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: ये ख्याल कैसे आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको तोलो तो ये नाराज वाला जो मामला था,
0: नहीं, वो कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम बड़े चाव से। तो ये
1: आइडिया कहाँ से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को, हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए। तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को, वो तो बहुत खुशी से मान गए, हाँ हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता, अच्छा कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद, कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म, ऐसे नहीं नहीं दादा ऐसे कैसे वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है वो मुझे माय डियर सिस्टर करके पुकारते थे,
1: और खरजदार आवाज,
0: हाँ बिल्कुल, माय डियर सिस्टर करके फिर हम भाग के जाते थे पंकज के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना मतवाले,
1: हाँ, हम पर जुल्म,
0: और मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ

0: लेके, थाली लेके, और आप गाना गाओ। तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो। और दीदी पास सुन रही होंगी, तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया। और फिर दादा उसमें रंग में आए, और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे, हाँ उन्होंने कहा वैसे क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया, और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक की, वो उन्होंने किससे सुनाया ये करिया, फिर अब राय चंद बुराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन म्यूजिक,
0: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर। और रायचंद बुराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने

0: एक डायरेक्टर और रायचंद बोराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी जी,
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर, उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बोराल साहब के पास गए, बोराल जी ऐसा है नहीं, बंकर से उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे, फिर उनको वही इतिहास और ये अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी।
1: कैसे मनाया,
0: मैंने कहा नहीं नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलान का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह, और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और शख्स को आप मनाया,
0: हेमंत कुमार, बिल्कुल। और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से भी बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। इस तरह हमारी फिल्म बन गई, लेकिन अफसोस की इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है। एक आर्काइवल फिल्म देखो ना, पंकज मलिक जैसे, और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई आई बहार,
1: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है, 40s की फिल्म है शायद, 41 की फिल्म है, आई बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए नाम मतवारे तिहारे, ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।

0: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहां इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच, एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
1: विच
0: इज नॉट एट ऑल ट्रू। आशा और लता दोनों बहनें दूसरे को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना। तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था, तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी। और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी
1: जी।
0: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज। देन इन माई फिल्म द लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेज। इन फैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हरसेल्फ अरुणा ईरानी डाइज, यू नो, इन द फिल्म। सो अगेन एंड लता जी वॉज विथ अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो देयर वॉज नथिंग रियली नथिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल
1: जबरदस्ती
0: बायोग्राफिकल फिल्म नहीं थी।
1: हाँ,
0: ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स। बट आई सेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं, दे आर कन्विंस कि नहीं ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई।
1: पर अब ज़ाकिर साहब को कैसे राजी किया?
0: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए, बहुत माने। He gave good music, but I had four music directors.
1: जी, पहली बार ऐसा हुआ?
0: या, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, ज़ाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेन हजारिका,
1: जी,
0: फोर पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टूगेदर एट सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स, नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल, हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस सब किया। बट आई वॉज throughout busy and I was only free at the end of this chain and unfortunately I was at the end. Tab tak Basu Chatterjee hue, Aruna Rajay hui, Sudhir Mishra hue, aur bhi aise 7-8 log hue, and every film flopped. Ek bhi film 2-3 din se upar nahi hui, they all flopped I think, and with the result that theaters took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theater to show any film because they have not paid their dues. So Saaz didn't have a theater.
1: Arre, so
0: phir television pe dikhai.
1: जी जी जी,
0: तो ऐसा ऐसा हुआ। सो बैड लक ऑल द वे। सो इट्स नॉट बीन जो एक हैप्पी ये होता है ना एक्सपीरियंस, तो अनफॉर्चुनेटली साज वाज नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर मी।
1: जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ कुछ चीजें जो है उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ। एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव कुमार या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं जानना चाहता
0: हूँ। अभी वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है
1: जी,
0: तो
1: थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटकथा, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही, फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे घर दिल्ली में, मतलब रह भी चुका था, आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया।

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में, कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?

0: था। हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा। फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है। तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है, फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है तो वहां ले आओ स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं। तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था। ऐसे 5-6 दफे हुआ और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी। तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है। और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है या मुझे ये कर रहा है। और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई। अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर वन हीरोइन थी और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे। वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है? वो हवा में नहीं लिखा जाता लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है, वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा। और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह कह रही हो, कहते हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई। संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी।
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है, नहीं नहीं कोई नहीं आप दाढ़ी बनाते जाइए मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं सुन रहे हैं और धीरे धीरे क्या मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही। फिर आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे एवरी साइन कि जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगे क्या। मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए, दो दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव्ड द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना और फिर मिलते हैं। फिर हम मिल गए और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर

0: प्रोड्यूसर मिल गया, तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुम्हें प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। और इसकी वजह ये थी कि बासु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहां उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस, तो उन्होंने जब सुना कि बासु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए। और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो, तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट, एंड देन शबाना नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेड अ गुड कपल यू नो, तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल टू बेस, और फिर शबाना और नसीर तय हो।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो और फारूक शेख, मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खासतौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी जी जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया, तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी।
0: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल,
1: नॉवेल के डायलॉग में बात हुई थी,
0: और चार्ल्स डिकेंस जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग, लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है। नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब, एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो, और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूं कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो चैप्टर स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए, जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी, तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट। और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि मेरे और काम
1: भी, एंड देन वन डे,
0: एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
1: जी, हाँ? जी,
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है, हाँ? उसका नाम है बार्किस,
1: बार्किस,
0: बार्किस, और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे को चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा, और पेगेटी बिचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए, तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी चुपड़ी,
0: चिकनी चुपड़ी, हाँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग, मतलब बार्किस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे, तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बारकिस इज विलिंग।
1: वाओ।
0: और मुझे मालूम था कि

0: ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार किस क्या बला है क्या है। हाँ, तो फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड।
1: क्या बात है, इसको कहते हैं नहले पे दहला
0: नहले पे दहला, बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी।
0: फिर काम शुरू हुआ एंड ही वॉज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
1: यस
0: अकादमी का।
1: बिल्कुल।
0: हाँ,
1: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
0: अरे बाबा काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो।
1: जी
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
1: जी
0: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है। हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के। तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इम्पोर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ, अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान ढिमका सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है। वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखू तो नसीर मेरे साथ है, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर गया ऐसा? नहीं नहीं हो गया हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम ना। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है। उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ, एक मजे की बात है, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे? संजीव कुमार।
1: ओ
0: तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली ही सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा। बड़े जिंदा दिल थे, तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सेड कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तो अदा? तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए। अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता।
1: जिंदगी की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है।
0: जब बताइए जरा कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए ये स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इट्स वंडरफुल।
1: 3 अवार्ड्स मिले थे
0: जी, एक पटकथा के लिए मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: वो प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है।
0: हाँ,
1: वो बताइए।
0: वो वहाँ बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था, बल्कि मेन वजह यह है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे बासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए।
1: क्या बात है।
0: यस,
1: वाह।
0: एंड ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगूनवाला।
1: जी जी,
0: फिरोज रंगूनवाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वाज गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च, आई वाज इनवाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब अच्छे स्टार से, कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में

0: विनी था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहते हैं मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत गलत है कि स्टार हो तो इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटेस्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बासुस। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब, और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो, एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बिचारी अकाउंटेंट बन गई सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही बासु का।
1: यहाँ मुझे लगता है तो अनुभव का गाना आप सुन लेंगे।
0: हाँ हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो
1: मेरी जान, मुझे जान कहो,
0: क्या कनू रॉय, अरे वो तो इतना गाना सुंदर है, प्लीज जरूर जरूर।
1: क्या बात है।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की।
1: इंजीनियरिंग में पाकू करियर बनाऊ छे तो डिप्लोमा बीई के डी टू डी माटे बेस्ट ऑप्शन छे। केजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
2: केजे आईटी सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
1: विजिट अवर वेबसाइट kjit.org टुडे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मिया, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

कहते हैं प्यार की शुरुआत अक्सर एक साधारण सी मुलाकात से होती है, एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी बात, और फिर धीरे धीरे दिल उस शख्स के आसपास अपनी दुनिया बसाने लगता है। कभी किसी बारिश भरी शाम में, कभी किसी सुनहरे सवेरे में, तो कभी भीड़ के बीच अचानक हुई मुलाकात में। प्यार चुपके से दिल का दरवाजा खटखटा देता है, और जब ये एहसास दस्तक देता है तो साधारण दिन भी खूबसूरत लगने लगता है। वो पहली मुलाकात का पल अपने साथ एक अलग ही एहसास लाता है। वो मुलाकात कुछ खास थी जब पहली बार मिले थे हम। क्या था उस लम्हे में कि धड़कनों ने तेज रफ्तार में आकर कह दिया कि दिल ढूंढ रहा था जिस खास को, वो तुम हो, बस तुम। याद है तुम्हें वो चांद की ठंडी चमकती चांदनी रातें, जब बेहिसाब प्यार लुटाते थे हम एक दूसरे पर। तुम्हारा यूं एकटक देखना और कह उठना कि तुम एक परी सी दिखती हो, इस सारे जहां में बस तुम ही तुम दिखती हो, जिसे सारे दुख सुख कह सकूं, तुम वो एक हमसफर सी दिखती हो।

एहसास बनकर, फिर एक आदत बनकर, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बनकर। पता ही नहीं चलता कि कब किसी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, कब उसकी मुस्कान दिन की सबसे खूबसूरत वजह बन जाती है, और कब उसकी मौजूदगी से हर मौसम सुहाना लगने लगता है, जैसे लंबे अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण। उसकी मौजूदगी से मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कविता की तरह लगता है, जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं। जब कोई दिल के करीब होता है तो उसकी खुशियां और दुख अपने लगने लगते हैं, और उसके साथ भविष्य के सपने सजने लगते हैं।

प्यार कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो तो चुपके से बिन कुछ कहे दिल के किसी कोने में उतर जाता है। पहले एक

प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। किसी के इंतजार में वक्त का ठहर जाना, किसी की आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाना और बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेना, यही तो है प्यार की सबसे खूबसूरत भाषा। ये वो एहसास है जिसमें दो दिल अलग होते हुए भी एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और खामोशियां भी कह उठती हैं कि मेरे दिल की हर धड़कन का नाम तुम हो, क्योंकि अब हर धड़कन में तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है। मेरे हर ख्वाब का मुकाम तुम हो, क्योंकि भविष्य की हर कल्पना में तुम्हारा साथ शामिल है और मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये कहानी अधूरी है।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कोई ऐसा जिसके साथ जीवन जीने का अर्थ समझ आने लगता है, जिसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कहानी की तरह लगता है, जिसमें भावनाएं हैं, सपने हैं, इंतजार है और प्यार की वो गहराई है जिसे शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। कभी कभी ये डर भी लगता है कि कहीं ये सपना टूट न जाए, क्योंकि जो चीज दिल के सबसे करीब होती है उसके खोने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन फिर उसकी एक मुस्कान, उसका एक विश्वास भरा शब्द सारे डर मिटा देता है और दिल फिर से उम्मीदों के आसमान में बेपरवाह सा उड़ने लगता है। और जब जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि जैसे जिंदगी की हर राह, हर मोड़, हर संघर्ष सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए था, जैसे सारी दूरियां, सारे इंतजार और सारी अधूरी दुआएं बस एक उसके मिलने पर आकर पूरी हो गई।

तुम्हारे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने अचानक मुझे अपना लिया हो, जैसे बरसों से बंद पड़ी किसी खिड़की से धूप दबे पांव भीतर चली आई हो। उस पल एहसास हुआ कि कभी कभी एक व्यक्ति का मिल जाना पूरी दुनिया के मिल जाने जैसा होता है। तुम्हारे आने से पहले लोग तो बहुत थे लेकिन कोई अपना नहीं था। सपने तो बहुत थे लेकिन उन्हें साझा करने वाला कोई नहीं था। फिर तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा और हर अधूरा एहसास पूरा होने लगा। अब खुशियां आने की वजह नहीं ढूंढती। तुम्हारी एक मुस्कान दिल को रोशनी से सराबोर कर देती है। तुम्हारी एक आवाज मन के सारे शोर को शांत कर देती है। तुम्हारा साथ ऐसा लगता है जैसे किसी लंबे सफर के बाद मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल गई।

तुम्हारे साथ बिताया गया कोई भी पल साधारण नहीं होता। तुम्हारी बातों में एक ऐसा जादू है जो थके हुए मन को सुकून देता है, जो बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से सजाने का हौसला देता है। कभी कभी तो मन सोचता है कि आखिर प्यार

इतना सुंदर क्यों होता है? शायद इसलिए कि वो हमें ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारी खामोशियों को समझता है, कोई है जो हमारी मुस्कानों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को पढ़ लेता है और हमारे हर सुख दुख को हमारे साथ बांट लेता है।

हमारे साथ बांट लेता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो मेरा बस यही जवाब होगा, तुम केवल मेरी कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम ही तो मेरी कहानी की खूबसूरती हो, तुम केवल मेरा सपना नहीं हो, तुम तो मेरे सपनों की ताबीर हो। तुम्हारे मिलने के बाद मुझे किसी और चीज की चाह नहीं रही, क्योंकि प्रेम का सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि किसी अपने को पा लेने में होता है।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने ने पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।

कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी

0: मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे गाया है उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है मन।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, श्रृंखला घुंघरू की तरह कलाकार गायक रविंद्र जैन का अंतिम भाग, प्रस्तुति रूपाली रूपक। विशेष जयमाला में आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा 7:00। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित मेजर दलजीत सिंह नारंग की शौर्य गाथा। सात बजकर 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें सुनिए अकॉर्डिंग पर अरुण पौडवाल को। रात्रि 8:00 हवा महल में सुनिए झलकी चोर के घर मोर, लेखन दिलीप सिंह, निर्देशन कमल दत्त। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सुधीर फटके पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10:00 सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। टलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, और रात्रि 11:00 कार्यक्रम होगा विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर, कल प्रसारित होगा भाग 262। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा का पहला भाग, कलाकार पंडित सीआर व्यास, प्रस्तुति रूपाली रूपक। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 और दोपहर 2:00 सुनिए

त्रिवेणी, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता अमजद खान पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10:00 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11:00 और रात्रि 11:00। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1:00 होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छायागीत आप सुनेंगे शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7:00। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है यहूदी। हवा महल का समय रहेगा वही रात्रि 8:00। कल हवा महल में सुनिए प्रहसन एब्स्ट्रैक्ट लव, लेखक धीरेन्द्र वर्मा, निर्देशन पुरुषोत्तम धारवेकर। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता अमजद खान पर। छायागीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00। आलेख और स्वर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन्द्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने सुना आदि पुरुष फिल्म का गाना। इसे गाया था सचेत टंडन परंपरा टंडन ने, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा था, संगीत सचेत परंपरा का था। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज में केदारनाथ फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: घुंघरू की तरह। कार्यक्रम के इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है आज इस श्रृंखला की छठवीं और अंतिम कड़ी।
1: संगीत सरता के श्रोताओं, हमारा ये खूबसूरत सिलसिला पिछली कई कड़ियों से चल रहा है और साथ में चल रहा है गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन साहब के साथ एक साक्षात्कार, जिसमें हमने उनके विभिन्न आयामों और विभिन्न पहलुओं पर नजर डाली, कभी संगीतकार के रूप में, कभी गायक के रूप में, कभी गीतकार के रूप में, कभी शोधक के रूप में, कभी चिंतक के रूप में। आज इस कड़ी में जैन साहब का एक नया अध्याय खोलते हैं जो हमें उनके आध्यात्म की ओर ले जाता है। ये आध्यात्म उन्हें कहां से मिला, कैसे प्राप्त हुआ और अपने मन से उन्होंने किस प्रकार आध्यात्मिक रचनाओं को सिनेमा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया, इस यात्रा के बारे में दादा से कुछ बात करें। दादा, आपका स्वागत है।
2: आध्यात्म आत्मा का स्वाभाविक गुण है और ये भी मुझे अपने पिताश्री से मिला है। मैंने फिल्मों में और धारावाहिकों में जो कुछ आध्यात्मिक काम किया है उसकी एक झलक छोटी सी आपकी सेवा में रख रहा हूँ।

0: जैसा आपने कहा कि यह आध्यात्मिक उजास आपको आपके पिताश्री से प्राप्त हुआ, आपके संस्कारों से मिला, इसके साथ साथ क्या कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनकी रचना का प्रभाव आपके मन पटल पर पड़ा हो और जिन्होंने आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया हो?
1: वास्तविक बात तो यही है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें हो सकता है शब्द या काफिया रदीफ कुछ अलग हो, लेकिन बात सब उन्हीं लोगों की वही लोग बोल रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और कोई आध्यात्मिक रचना आपने कुछ जी। पद भी संगीतबद्ध किए हैं और लोगों को एक एक अजीब सा मतलब अजीब वातावरण से हटा के आध्यात्मिक तरफ लाई हैं आपकी रचनाएं, कुछ और कुछ सुनाए दादा?

0: तथा संगीत सरता के सफर में आपके साथ चलने के साथ मैंने एक बात पाई है कि आपके अंदर जो स्पॉन्टेनियस काव्य रचने की क्षमता है वो बड़े कमाल की है। न जाने कैसी आध्यात्मिक और वैचारिक शक्ति है जिससे आप तुरंत कविता कह देते हैं, काव्य रच देते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे?
1: मैं सिर्फ अपने आप को उस माहौल के हवाले कर देता हूँ और वहां से जो कुछ फूट पड़ता है उसे गा देता हूँ।
0: संगीत सरता का ये संगम, ये सफर भी यहाँ परिपूर्ण हो रहा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम चाहते हैं आप श्रोताओं को दो शब्द कहें।
1: पहले तो मैं अपनी भावना रखना चाहूंगा और फिर एक मुखड़ा सुनाऊंगा
0: अवश्य,
1: जो अभी अभी मेरे मन में आया है गाने का। ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे।
0: वाह वाह।
1: ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे। ज्ञान का यदि ज्ञान दे तो उस पे मत अभिमान दे, और यदि अभिमान दे तो औरों का गुणगान दे। शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान दे।
0: वाह वाह।
1: शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान दे।

0: दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ आने के लिए और हमारे असंख्य श्रोताओं को लाभान्वित करने के लिए। मैं राजेश चौरी आपसे विदा लेता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविन्द्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: प्रस्तुत है फौजी भाइयों की सेवा में विशेष जयमाला कार्यक्रम।

0: फौजी भाइयों की सेवा में आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा।
1: फौजी भाइयों को अनूप जलोटा का नमस्कार।

आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे गाने सुनाने जा रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप ऐसे माहौल में बैठे हैं जहां हर पल आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस कठिनाइयों से अगर मन को थोड़ा दूर करना हो, मन को थोड़ा हटाना हो, तो एक बड़े ही अच्छे एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको पहला गाना ऐसा सुनाने जा रहा हूं जो आज का सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना है, कजरारे कजरारे, मुझे भी बहुत प्रिय है। लीजिए आप भी सुनिए।

फौजी भाइयों, मैं किशोर कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। बचपन से उनके गाने गाता रहा हूं। एक गाना उनका जो गूंजता रहता है कानों में, चिंगारी कोई भड़के, आइए इसे सुनते हैं।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा।
1: फौजी भाइयों, एक ऐसे सिंगर को मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ जिनकी आवाज सुन के लगता था जैसे 100 आवाजें एक साथ गा रही हो, जैसे एक ऑर्गन बज रहा हो। हेमंत कुमार साहब। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा कि मेरा हमदम मिल गया।

0: मिल गया।
1: फौजी भाइयों, मदन मोहन साहब एक कमाल के कंपोजर हुए हैं और सोने में सुहागा लता जी की आवाज, इन दोनों ने मिलकर ऐसा ऐसा काम किया है जो हमेशा याद रहेगा।

फौजी भाइयों, मैं आपको एक अपना भजन जरूर सुनाना चाहूंगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि इसी भजन से मेरी पहचान बनी। कई बार होता है मैं कहीं जा रहा हूं और पीछे से कोई ये भजन गुनगुना के मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन

ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जाने माने गायक भजन सम्राट अनूप जलोटा ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: कार्यक्रम अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: देव आनंद।
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
0: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला।
5: વિવિધ ભારતીનું વડોદરા કેન્દ્ર આપ સાંભળી રહ્યા છો 93.9 મેગાહર્ટ્ઝ પર. પ્રસ્તુત છે એક ફિલ્મી ગીત.

जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम।

फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। आ फिल्म में सदाबहार मुगल गीत स्वर से कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने, गीतकार जावेद अख्तर, संगीत आर डी बर्मन नु छे।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए दिलीप सिंह की लिखी झलकी, चोर के घर मोर।
1: जीवन के सफर में राही
2: भाई,
3: भाई नहीं राही यार, ये पुराना गाना जो मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ।
2: पर तू ये बता कि तू बेलापुर को भूल गया?
3: बेलापुर
2: जहाँ तू पैदा हुआ था।
3: अरे बेलापुर को कैसे भूल सकता हूँ।
2: हाँ, वहाँ बेलापुर में तेरा एक चाचा है राम भरोसे, है कि नहीं?
3: है।
2: उसका एक बेटा है पोला, है कि नहीं?
3: है।
2: वो पोला तेरा भाई हुआ, है कि नहीं
3: हुआ?
2: तो फिर मैं ही तो पोला हूँ।
3: भाई तू यहाँ क्या कर रहा?
4: मैं पहले तो नौकरी ढूंढता रहा, जब नौकरी नहीं मिली तो तुझे ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे तू क्या करता?
3: मैं नौकरी करता हूँ।
4: तो मेरी भी लगवा दी।
3: नहीं नहीं नहीं, तेरे लिए नौकरी करना बड़ा मुश्किल काम है।
4: मेरे लिए नौकरी बहुत मुश्किल काम। हाँ, तो फिर तू कैसे करता? तुझे तो ना दूध धोना आता है, ना हल चलाना आता है, ना बकरियां चलाना आता है।
3: नहीं, मैं दूध धोने का काम नहीं करता।
4: अच्छा, तो फिर तू क्या करता भाई?
3: मैं अब तुझे क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ?
4: चल छोड़, क्या समझाने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कर, तू मुझे अपने घर ले जा, वहाँ जाके पहले तो पेट भर के मेरे को रोटी खिला।
3: बाप रे,
4: उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। तूने मुझे नौकरी लगवाना तो नौकरी लगवा देना, नहीं तो तू नौकरी लगा, मैं तेरे घर बैठ के रोटियां तोड़ा करूंगा।
3: लेकिन देख, तू मुझे बहुत महंगा पड़ेगा।
4: अच्छा,
3: खैर मैं कोशिश करता हूँ कि शायद तेरी नौकरी लग जाए।
4: हाँ,
3: देख, मैं तुझे अपने बॉस के पास ले जाता हूँ।
4: हाँ, हाँ,
3: मेरी हाँ में हाँ मिलाना,
4: बिल्कुल
3: बीच में नहीं बोलना
4: ना जी। ना,
3: अगर हमारे बॉस खुश हो गए तो तुझे नौकरी मिल जाएगी।
4: चल फिर,
3: आ जा फिर।
5: मंगल सिंह।
3: ये सर,
5: ये तेरे साथ जानवर कौन सा?
3: नहीं सर, ये मेरा भाई है और भाई ये मेरे बॉस है, मैं इन्हीं का नमक खाता हूँ।
4: अच्छा, तो इनका नमक खाता है?
3: हाँ।
4: तो इसका मतलब है कि चीनी के लिए, दाल के लिए, आटे के लिए सब अलग अलग बॉस रखे हुए।
3: बॉस आप इसे भी नौकरी पे रख लीजिए।
5: देखो मंगल सिंह, हमारे धंधे में आदमी एक बार अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। सुनो, ये लड़का भरोसे का है?
4: तूने मेरे बाप का नाम नहीं, मैं राम भरोसे का लड़का हूँ जी।
5: खुश हुआ,
3: खुश होगी, होता रहता है।
5: जबान तो खूब चलती है।
4: तो अंकल मेरा तो सब कुछ चलता है जी, हाथ पैर नाक कान मुंह सब कुछ चलता है, कभी कभी थोड़ा बहुत दिमाग भी चल लेता पैदल। आंटी, आंटी, आंटी जी, आप क्यों बार बार दांत निकाल रही हैं?

0: रहा तो।
1: यार अब मैं इसे दीदी तो कह नहीं सकता क्या। अच्छा नीना जी देखें आप मेरी तरफ बार बार देख के हंस रही हैं, मेरा कोई कुर्ता फटा हुआ है या मैंने कोई गलत बात कर दी है?
0: गलत तो तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम शायद जानते नहीं हो हमारे बॉस गाय और भैंस का धंधा नहीं करते।
1: ओए वो तो इसकी शक्ल से ही लग रहा है, इतनी डरावनी शक्ल देख के गाय दूध तो क्या पानी भी नहीं देगी।
2: वैसे वैसे आपके ये बॉस करते क्या है जी?
3: मंगल सिंह
4: ये सर
3: तो कुछ भी नहीं जानता, ये हमारे किस काम आएगा?
5: बॉस सीख जाएगा, मैं सिखा दूंगा।
3: सुनो तुम चोरी करना जानते हो?
2: लो सर जी अपने गांव में पेट कैसे भरते थे चोरियां कर करके, तो आज तक पेट पालते रहे।
3: क्या नाम है तुम्हारा?
2: मेरा नाम है जी भोला।
3: भोला
2: जी भोला।
3: गेम्बो खुश हुआ।
1: खुश हो गई।
3: अरे डाकुओं में किसी का नाम भोला तो मैंने सुना नहीं। डाकुओं के नाम होते हैं मंगल सिंह, शेर सिंह, बब्बर सिंह, गप्पल सिंह, भोला।
2: देखे सर आप ज्यादा हंसे मत, आप मेरी माँ की मजबूरी समझने की कोशिश कर।
3: क्या है तुम्हारी माँ की मजबूरी?
2: भाई उसे बचपन में तो नहीं पता था ना कि मैं बड़ा होकर इतने बड़े डाकू के रुतबे को हासिल करूंगा। नहीं तो वो भी को मेरा नाम शेर चेता सिंह। वैसे यार तुम लोग मुझे डाकू बना रहे हो।
3: हाँ
2: अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं भी अपना नाम बदल कर मगर सिंह रख लेता हूँ जी।
3: डाकू मगर सिंह अंडर ट्रेनिंग। वो दूर लाल कोठी देख रहे हो?
2: दूर अब इतनी भी दूर नहीं है जी, पर देख रहा हूँ वैसे।
3: वहाँ जाओ।
2: हाँ जी।
3: और डाकुओं की तरह उनका कलर टीवी विद रिमोट उठा लाओ।
2: अच्छा
3: अगर तुम बगैर पकड़े जाने के ये काम कर दो तो समझ लो तुम कामयाब हो गए और तुम्हें हमारे पास नौकरी मिल गई।
2: क्या बात कर रहे हैं सर जी, मैं तो अपने गाँव में मुर्गियाँ चराता रहा हूँ जी, जो कुड़ करके कभी भी आदमी को पकड़वा सकती है। ये बेचारा बेजान टेलीविजन क्या बोलेगा।
3: ठीक है निकल लो पतली गली से।
2: अभी गया जी।
5: बॉस आपने भोले को भेज तो दिया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं अनाड़ी पकड़ा ना जाए।
3: मुझे अम्बो खुश हुआ। अरे पकड़ा गया तो तेरी जान छूट जाएगी एक जबरदस्ती के बने हुए मेहमान से।
5: लेकिन बॉस मुझे डर है कि कहीं हमारे बारे में कुछ बता ना दे।
3: उसे हमारे बारे में पता ही क्या है जो बता देगा। सुनो मंगल।
6: यस बॉस।
3: तूने उसके रहने का बंदोबस्त तो कर दिया?
6: मेरे साथ ही रह रहा है साहब, क्योंकि मेरे विलेज का आदमी है।
7: बॉस वो आ रहा है
3: पैदल।
7: हाँ जी पैदल।
3: सुनो क्या टीवी उसने सर पे उठाया हुआ?
7: वो टीवी नहीं जी।
3: तो क्या बगल में है?
7: नहीं।
3: तो फिर वो चोरी नहीं कर सका। मेरी पिस्तौल
6: ये लीजिए, ये लीजिए।
5: नहीं नहीं नहीं बॉस नहीं, जान से मत मारिएगा। पहली बार तो बड़े बड़े डाकू भी नाकाम हो जाते हैं।
3: हर किस नहीं।
2: गुड मॉर्निंग सर। आ गया। गुड मॉर्निंग जी।
3: गुड मॉर्निंग।
2: हाँ जी सर।
3: टीवी कहाँ है?
2: टीवी वो दूर लाल कोठी में जी।
3: लाया क्यों नहीं?
2: लाया क्यों नहीं?
3: कोठी के अंदर कितने आदमी थे?
2: आदमी तो एक भी नहीं था जी।
3: तो फिर क्या औरतें थी?
2: औरतें होती तो मैंने वापस आना था जी। मेरे एक बच्चा था जी वहाँ पर।
3: सिर्फ एक बच्चा? फिर भी तुम खाली हाथ लौट आए?
2: मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ सर जी, मैं तो पूरा का पूरा बच्चा उठा लाया
3: हूँ। खुश हुआ?
2: फिर खुश हो गई।
3: लेकिन मैं क्यों खुश हुआ?
2: यही तो मैं पूछ रहा
3: हूँ। बच्चे का मैं क्या करूँगा?
2: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, इतना बड़ा जरायम का धंधा करते हैं आप, अखबार नहीं पढ़ते?
3: वो
2: मेरा मतलब है कि आजकल तो अखबारों में रोज निकलता है कि बच्चे उठाना तो बहुत फायदे का काम है सर जी। हमने बच्चा उठा लिया, उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया कि हमारा बच्चा गुम है। हमने उनको खबर कर दी कि आपका बच्चा हमारे पास है।
3: हमारे पास
2: बच्चा चाहिए तो रात के 12 बजे पुल वाले कब्रिस्तान में 10 लाख रुपए लेके आ जाओ। बच्चा ले जाएंगे, 10 लाख
3: दे जाएंगे।
2: आप 10 लाख का कलर टेलीविजन ले लेना, मैं नई कमीज संभालूंगा। मैंने लगन
3: उसे यहाँ ले आओ ताकि हम भी एक नजर देख लें।
2: तौबा तौबा ये नहीं हो सकता।
3: क्यों
0: क्यों नहीं हो सकता?
2: भाई भगवान ने आप लोगों की शक्लें इतनी डरावनी बनाई हैं, बच्चा बेचारा देखेगा तो समझेगा।
0: बच्चे को मारे हैं कि तुम उसे उठा के लाए हो?
2: ना जी ना, वो तो समझ रहा है कि अपने मामे के घर आया।
3: तो ठीक है मैं जाकर देखता हूँ कि अखबार के दफ्तर में कोई गुमशुदा बच्चे का इशार देने आया है कि नहीं।
2: और ठहरिए साहब, ये अभी बहुत जल्दी है जी।
3: क्यों क्यों?
2: अब भाई मैं 4 दिन से घर से भागा हुआ हूँ, मेरा तो आज तक इश्तहार आया नहीं, और वो बच्चे को बेचारे को तो जुम्मा जुम्मा 4 मिनट हुए उठा के।

0: इसलिए इश्तेहार नहीं दिया कि चलो गुम हुआ तो जान छूटी।
1: एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी बातों का कीचड़ मेरे कुर्ते पर पड़े उछाल लें, पर अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसा मत बोले, माइंड कर
2: जाएगा। खुश हुआ,
1: फिर खुश हो गई।
2: सुनो, मैं जरा देख कर आता हूँ कि हमारा सोना लाने वाला जहाज पहुंच गया है या नहीं।
1: अम बॉस, मैं भी आपके साथ चलूंगा जी।
2: मेरे साथ?
1: हाँ जी।
2: क्यों भाई?
1: अरे मैंने आज तक कभी जहाज नहीं देखा सर।
2: कोई जरूरत नहीं, जब मौका आएगा तो दिखा देंगे तुम्हें जहाज।
1: अच्छा जी, चलो ठीक है, अब मैं भी फिर चलता हूँ जी।
0: ओके बॉस।
2: ठीक है, मैं 2-3 घंटे में लौट के आता हूँ।
0: बाय बाय।
1: अच्छा मंगल, मैं भी चलता हूँ।
3: अभी गया अभी आया, हम दो और हमारा एक।
1: हेलो, नमस्कार जी, मगर सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं बहन जी, नहीं आपने पहचाना नहीं जी मुझको? पहचानते कैसे, आपसे मेरी कभी टेलीफोन पर बात जो नहीं हुई। हाँ जी हाँ जी, ना जी फोन तो मैंने इसलिए किया जी कि मैंने सुना कि आपका बच्चा गुम गया, मुझे कैसे पता लगा? ओ मैं तो बच्चे को किडनैप करके ले आया सुनिए। हाँ, अब पड़ी ना बात खोपड़ी में। अगर अपना बच्चा जिंदा चाहिए 10 लाख रुपया लेकर पुल वाले कब्रिस्तान में रात के 12 बजे आ जाना। हाँ, पर बात सुनो ध्यान से, नोट नवे नकार होने चाहिए, मैले नोट मत लेना सोनिया। मैले नोट होंगे तो बच्चे को भी मैला कर दूंगा। और खबरदार, अगर पुलिस को बताया तो बच्चे को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा, ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि ढूंढते रह जा। मैं जाके इसकी माँ को उठा के लाता हूँ। है जी, अभी आया।
2: क्यों भाई मंगल सिंह, क्या खबर है?
0: सर वो बस सोना पहुंच गया।
2: हाँ पहुंच गया, और गोदाम में भी पहुंच गया।
0: वेरी गुड।
2: सुनो नीना डार्लिंग, भोला कहीं नजर नहीं आ रहा?
0: बॉस, भोला बच्चे की माँ को भी किडनैप करने गया, बोल रहा था दोनों को ले आएगा तो रैंसम ज्यादा मिलेगा।
2: नहीं नीना, गड़बड़ हो जाएगी, तुम जरा फोन मिलाओ, मैं बात करता हूँ।
1: मैं लाता हूँ।
0: नहीं नहीं बॉस, फोन करने से क्या फायदा है, वहाँ तो कोई होगा ही नहीं, भोला उन्हें उठा के ले ही आ रहा होगा।
1: रास्ते में होगा बॉस।
2: मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, तुम उस औरत और बच्चे को मेरे सामने पेश करो, मैं उन्हें गोली से उड़ा दूंगा।
0: नहीं नहीं बॉस, बॉस बच्चे बहुत प्यारा है।
2: वो मेरे लिए फांसी का फंदा बन सकता है। वो मुझे शुरू से ही लग रहा था कि ये भोला हमारे लिए मुसीबत बनकर रहा है।
1: एक्सक्यूज मी सर, आप ये कैसे कह सकते हैं?
2: क्यों?
1: मैं तो आपके लिए 20 लाख का बॉन्ड लेकर आया हूँ।
2: वो बॉन्ड कहाँ है?
1: वो यहाँ है, मैं अभी पेश करता हूँ।
2: मेरी बंदूक।
1: भांजे भांजे, अपनी माँ के साथ आ जाओ। पापा,
4: पापा, तो तुम इन गुंडे का सरदार हो? मुझे तो कहते थे कि बिजनेस के चक्कर में आता जाता रहता हूँ, तो ये है तुम्हारा बिजनेस, चलाओ चलाओ हम पर गोली चलाओ।
2: लक्ष्मी, अबे ओ भोले के बच्चे, मैंने तुम्हें लाल कोठी में जाने को कहा था, तुम हमारे घर कैसे चला गया?
1: ओ सर, मैं जरा कलर ब्लाइंड हूँ जी, मुझे रंग की गलती लग गई होगी।
2: अच्छा, तू कलर ब्लाइंड है, तेरी तो। अपने हाथ ऊपर कर लो, कोई नहीं लेगा।
5: और बंदूक को नीचे फेंक दो, वरना मैं गोली से उड़ा दूंगा एक एक को। हम पुलिस के आदमी,
2: पुलिस के आदमी हम लोग।
6: माय गॉड,
2: मुझे बहुत खुशी हुआ। अरे पुलिस तो पकड़ लीजिए इसे, इसने बच्चे को अगवा किया है। हाँ। पकड़ लीजिए इस भोला को।
7: ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं।
2: क्या कहा?
7: और सर एक और खुशखबरी है, हमने इनके गोदाम पे छापा मारा है और सारे गोदाम को सील कर दिया है।
1: वेरी गुड। और इनका सोना जब्त कर लिया?
7: जब्त कर लिया सर।
1: इनके आदमी पकड़ लिए?
7: सारे पकड़ लिए सर।
1: वेरी गुड, बैकअप।
2: अबे भोले, तू पुलिस इंस्पेक्टर है?
1: अदावर्ज है।
2: ऊपर से भोला, अंदर से बम का गोला।
1: अदावर्ज है।
4: कम से कम तुम्हारी तरह ऊपर से भोला और अंदर से बदमाश तो नहीं है?
1: She's right.
2: भोले, अगर मुझे पकड़ना था तो मेरे बीवी बच्चों को क्यों उठा लाए?
1: भाई इसलिए क्योंकि आजकल बहुत से मुजरिम परिवार समेत मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। अब आप जल्दी से आइए बाहर, वैन आपका इंतजार कर रही है।
6: बॉस गोली चला दूं?
2: चला दो।
6: लेकिन बॉस बंदूक तो मेरे पास है नहीं।
1: बंदूक तो यहाँ है। थैंक यू नीना, थैंक यू।
2: नीना तुम भी इनके साथ मिली हुई हो?
0: अब तक तो नहीं थी बॉस, लेकिन आज मैं भी नेकी और बदी के रास्ते में फर्क जान गई हूँ, इसलिए आज से आप मुझे इन्हीं के साथ समझिए।
2: ठीक है लक्ष्मी, मुझे डर है कि तुम्हारा और बच्चे का क्या होगा, तुम लोग कहाँ रहोगे?
4: हम कहीं भी रहें, कम से कम तुम्हारे साए से बहुत दूर रहेंगे।
2: लक्ष्मी तुम भी?
4: मैं बदली नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पति के साथ नहीं रहना चाहती जो चंद चांदी के टुकड़ों की खातिर अपने परिवार को बेचने को तैयार हो। हाँ, अगर आप जेल से सुधर कर आए तो मैं आपको इंतजार करती, जरूर मिलूंगी।
6: बॉस, ये तो वो वाली बात हो गई

0: स्मगलर के घर बगलर।
1: नहीं अंकल, इसे कहते हैं चोर के घर
2: मोल।
3: अभी आप सुन रहे थे झलकी चोर के घर मोर। इसे लिखा दिलीप सिंह ने, निर्देशित किया कमल दत्त ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं केके की आवाज में। फिल्म का नाम है वो लम्हे, गीत लिखा नीलेश मिश्रा ने, संगीत प्रीतम का।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं सलमान खान की आवाज में हीरो फिल्म का गाना। गीत कुमार ने लिखा है, संगीत अमाल मलिक का।

आइए अब सुनते हैं जिद फिल्म का गाना। सुनिधि चौहान और शारिब शबरी की आवाजों में, गीत शकील आजमी का है, संगीत शाबिर तोशी का।

अगला गाना है फिल्म पति पत्नी और वो से, इसे गाया है रोचक कोहली, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ ने। गीत कुमार का है, संगीत रोचक कोहली का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा।

कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और

0: परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
1: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम वन के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर

0: केंद्रित होगी। इसके अतिरिक्त तो कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वाश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी।

0: समाचार भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज से। फिल्म का नाम है जानी दुश्मन। गीत वर्मा मलिक का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मिया, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हाथ की सफाई फिल्म का गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

वक्त की आवाज़, जी हाँ ये नाम है फिल्म का। इसमें आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें। गीत अनजान का है संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का

0: आइए अब सुनते हैं अनवर और मीना पटकी की आवाजों में दूल्हा बिकता है फिल्म का गाना। गीत गुलशन कानपुरी ने लिखा है, संगीत बप्पी लहरी का।
1: हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विकू वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेन सिंह को सुनिए। फिल्म का नाम है परवरिश, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना परवरिश फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है कर्म, गीत लिखा है राजकवि तुलसी ने, संगीत आर डी बर्मन का।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

सुधीर फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

में सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासूवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्ये गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची गोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि ग.दि. माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

फिल्में सुधीर फड़के की कुछ गिनी चुनी फिल्में ही हैं। भाभी की चूड़ियां के अलावा उनकी एक फिल्म आई थी गोकुल का चोर।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आसमान से बरसती बूंदें बूंदें नहीं हैं, कविताएं हैं। बरस रही है रूमानियत आसमान से। बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, बारिश त्योहार है, और इस त्योहार को कमरे में बंद होकर नहीं मनाया जा सकता। बारिश खिड़की से नहीं देखी जाती, बिना छाते या रेनकोट के निकल जाना चाहिए सराबोर होने के लिए, क्योंकि बारिश तो धरती का उत्सव है, बारिश तो हमारा त्योहार है।

हमने कहा ना कि बारिश तो धरती का उत्सव है। जैसे ही मौसम की पहली बूंदें पड़ती हैं, मुस्कुराने लगते हैं पेड़ पौधे। देखिए तो कैसे पत्तों का रंग उजला हरा हो जाता है, घास जैसे नाच उठती है, फूलों पर ठहरी बारिश की बूंदें मोती की तरह चमकती हैं, पंछी चहचहाते हैं तो लगता है कुदरत के इस उत्सव में चल रही है कोई जुगलबंदी। ऐसे मौसम में नदियां और तालाब भी झूम पड़ते हैं, झरने भी गुनगुनाते हैं, बादल छेड़ देते हैं कोई राग। ऐसे मौसम में उदासी घुल जाती है, धुल जाती है। चलो बारिश में भीगने निकल पड़ो।

बारिश सबको खुश नहीं करती, बारिश किसी किसी को उदास भी करती है। सवाल यह है कि इतनी झूमती हुई खुशियों वाली बारिश किसे उदास करती है? बारिश उसे उदास करती है जिसका साथी उसके पास नहीं। बारिश उसे उदास करती है जो किसी का हाथ पकड़कर सराबोर होने निकल नहीं सकता। बारिश उसे उदास करती है जो अकेला है। बारिश अकेले लोगों के लिए एक तकलीफ है। अकेले लोगों के लिए बारिश बहुत सारी यादों की जुगनू लेकर आती है जो उनके अकेलेपन को रोशन करते हैं।

0: चाय गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता।
0: हम अभी हाजिर हुए।

तपती धरती पर राहत के कुछ छींटे पड़े। जब ठंडक मिली तो सब झूम उठे। बारिश का ये मौसम धरती के चहेतों के लिए काम का मौसम है। मेहनत के पुजारी, धरती पर बीज बिछाने वाले किसान, जो पूजा करते हैं इस धरती की, बीज बिछाते हैं प्यार के, ताकि दुनिया में कोई भी भूखा न रहे। बारिश के इन दिनों में भीग भीग कर खेतों में काम करने वाले किसानों को सलाम, उनकी मेहनत, उनकी लगन को सलाम। सचमुच हम उनके कर्जदार हैं।

चलो मिलकर भीगे बारिश में, तुम कुछ गुनगुनाओ और तुम्हारे साथ जुगलबंदी करे ये बारिश। इस झूमती बारिश में शहर की सड़कें नापने का लुत्फ ही कुछ और होता है। शहर अगर समंदर के किनारे हो, लहरों में सराबोर होने का मजा ही कुछ और होता है। अगर पास में है कोई नदी, तालाब या झरना, तो उसका तिलस्म बारिश में देखते ही बनता है। बारिश रूमानियत का मौसम है। बारिश की इस रूमानियत को किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हाँ, तो इस बारिश में क्या कर रहे हैं आप? अपनों की टोली के साथ पिकनिक का कोई इरादा है, या फिर बस कमरे में बैठकर खिड़की से बारिश के छींटे पड़ते देखने हैं? अगर आपके अपने साथ हैं तो ये बारिश आपके लिए है एक संगीत से भरा मौसम, और अगर आप अकेले हैं तो ये बारिश आपके लिए विरह की चुभन लेकर आई है। जिंदगी का एक पहलू विरह भी है। जब कोई अपना दूर हो तो शिद्दत से पुकारना चाहिए उसे, और इंतजार करना चाहिए उन दिनों का जब मिले अपने साथी का साथ।

0: छायागीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ढलती जाए रात।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
5: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
5: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
5: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
5: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
5: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
5: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
6: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेलिब्रेट के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता मित्रों, एफएम बैंड 93.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारतीनू आ वडोदरा केन्द्र आप सांभळी रह्या हता। अत्यारे रात्रिना 11:10 थई छे। आजनी प्रसारण यात्राने अहीं विराम आपीए। आवतीकाले सवारे 5:52 फरी मळीशुं। अत्यारे शैलेन्द्रसिंह जाडेजाने रजा आपशो। शुभरात्रि, जय हिंद।